सामिन, आप हमें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से समाप्त फरमा रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के नशरियात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा पता नोट फरमा लीजिए। इंचार्ज उर्दू प्रोग्राम, वॉइस ऑफ तुर्की, पोस्ट बक्स नंबर 333, पोस्ट कोड नंबर 06443, यानी शहर अंकरा, तुर्की। हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@trt.net.tr और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rturdu.com। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।

था और उसी वजह से यूरोपीय रियासतों को एक नई आलमी जंग की तरफ घसीटा जा रहा था। यह फौजी मैदान में तहकीक थी जो दूसरी जंग अजीम से पहले शुरू हुई और बतदरीज तेज़ होती गई, जिसने मेटल डिटेक्टर्स की तकदीर भी बदल दी। इस शोबे में काम करने वाले नामों में से एक साइंसदान का नाम गेराड फिशर था। जर्मन नजात अमरीकी गेरहार्ड फिशर का बुनियादी मकसद जमीन के अंदर मौजूद धातुओं की खोज के लिए मेटल डिटेक्टर ईजाद करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा आला बनाना था जो बर्की मकनातीसी लहरों के साथ काम के खाली इलाके में सिम तलाश करे ताकि फौजियों को पहुंचने से रोका जा सके। मैदान जंग में हारे फिशर ने इस आले को बनाया और यह कामयाब रहा, लेकिन उसे एक छोटी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। आला, जिसने आमतौर पर फील्ड ट्रायल्स के दौरान मौसर तरीके से काम किया था, कुछ इलाकों में गैर मामूली नतायज दिए। फिशर ने इब्तदाई तौर पर सोचा कि आले में खराबी है, लेकिन उसकी नई ईजाद, जिसने कहीं और बहुत अच्छी तरह से काम किया, उसी तरह की बेजाबतगियों को जाहिर करता है, ख़ास तौर पर जब यह किसी खास इलाके में आया जिसमें चट्टानों में धातें मौजूद होती थीं। बहुत सी कोशिशों के बाद फिशर ने दरियाफ्त किया कि उसके आले में कोई खराबी नहीं थी, कि चट्टानों में मौजूद

0: बीम में खलल पड़ सकता है तो उसके लिए मशीन को डिज़ाइन करना मुमकिन होगा जो जेर ज़मीन धातों का पता लगाएगी। ये नतीजा जिस तक वो पहुंच गया अगरचे इतफाक से था, लेकिन साइंसदान गेरहार्ड फिशर को जदीद मेटल डिटेक्टर के मौजूद का खिताब हासिल करने के भी काबिल बनाया। फिशर ने 1925 में पहला हाथ से पकड़ा हुआ जदीद मेटल डिटेक्टर तैयार किया और 1931 में अपनी नई ईजाद को पेटेंट करवाया। दूसरी जंग अजीम में भी नए डिटेक्टर्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी अहमियत भी साबित की थी। आसान अल्फाज में डिटेक्टर बर्की मकनतीसी नशरियात को किसी खास हदफ या माहौल में भेजता है और वापसी सिग्नल का तजिया करके धात और गैर धात में फ़र्क करता है। इस तरह आसानी से मालूम किया जा सकता है कि किसी शख्स के पास बंदूक, मोबाइल फ़ोन है या लाइटर, और ज़मीन के नीचे दबी हुई बारूदी सुरंगों या कीमती धात की बारूदी सुरंगों की सही जगह का भी तायुन यह कर सकता है। आजकल मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल के इलाके में बतदरीज तौसी हुई है। जदीद मेटल डिटेक्टर्स बहुत से शुबों में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें आसार कदीमा की खुदाई से लेकर टेलीफोन, कुदरती गैस और निकासी आप के निज़ाम का पता लगाने तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।
1: अहम इजादात।